नानक कंतना जापनी हर ताके पारावार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जन जीरियां तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नान करना जिन किया फिर तेसी करनी सार।

पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बगसो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान ने ओटिया दी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबद।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर वरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कहज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणज त्रिपवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जब लौ नहीं भाग लिलारे उदय तब लौ प्रमते फिरते बहुताय आओ काल कोर समुद्र मैं बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछुताय आओ तत् विचार यह मथुरा जग तारन कहो अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो विसर नाहीं दातार अपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए गुर सिख हो गुर सिख है पीर पीर हो कोई शब्द सुरत चेला गुरु परमेसर सोई दर्शन दिष्ट ध्यान तार गुर मूरत होई शब्द सुरत कर कीर्तन सत संग विलोई वाहे गुरु गुर मंत्र है जप हौ मैं खोई आप गवाए आप है गुण गुणी परोई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाय दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै
सिफत खसामदी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सचे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साह जिस पास बैठिया सो ही है सबना देश सज्जन सच्चा पाते साह सिर साह जिस पास बैठिया सो ही है सबना देश सत

नव खंडन को राज कमावा अंत चला गोहारी गुण निदान गुण ते नहीं गाए जा कौ कृपा तारी सो सुखिया धन उस जन्मां नानक तिस बलिहारी गुण निदान गुण ते नहीं गाए जाका।

पवन गुरु पाण पिता माता तत् महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आया बुरे आई आवा चेतन महादूर

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

आप हाथ दले हो उबारी सर्व ठार मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया आए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओन राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखानियो दोहरा सगल द्वार काओ छाड़ कै गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार काओ छाड़ कै गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शबद गावण आईयां शबदो ता गावहु हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईयां कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईयां सदा कुर्बान कीता गुरु विट हों जिस दिया एह वड़ियाईयां कह नानक सुन हो संत हो शबद तुर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सभागै कर सभागै शबद वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लगे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुन हो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿ

तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई रखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंध प मेरा सखा सखाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थपे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चूके सब सोग संतापे। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करहो किश मेहर पावहो, डुबदे पत्थर तारे। जीअड़ा अग्न बराबर तपै, पितर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। असी खते बहुत कमाव दे, अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श लो, हों पापी वड गुनहगार। हर जियो लिख वार न आवई, तू बख्श मिलावन हार। लिख कत हे ना छूटिया, खिन खिन भूलन हार। बखसन हार बखसल नानक पार उतार। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परस आए गुरु का, जन्म

काचे गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई, काहे भैया फिर जब दस मास उर्द मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया रहा, ज्यों मधुमाखी त्यों सठोर रस, जोर जोर तन किया मरती बार ले हो करिया रहन क्यों दिया, देहरी लो बरी नार संग पई, आगे सजन सोहेला मार कट लाओ सब लोग कुटुंब भयो।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाण दिखै दिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जन त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसामदी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह जिस पास बैठिया सोही है। सबना दावे सा, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह जिस पास

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले किते छुटे ना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोका ना श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला।

कूड राजा, कूड प्रजा, कूड सब संसार, कूड मंडप, कूड माड़ी, कूड बेसनहार, कूड सोयना, कूड

0: दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सच ता पर जानियो जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोय। सच ता पर जानियो जा सच धरे प्यार, नाउ सुन मन रहसियता पाए मोख द्वार। सच ता पर जानियो जा जुगत जाने जियो, धरत काया साध के विच दे करता बियो। सच ता पर जानिए जा सिख सची ले, दया जाने जी की किश पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा तम तीर्थ करे निवास, सतगुरु नु पुछ कै बहरे करे निवास। सच सबना होए दारू पाप कड़े तोए, नानक वखाने बेनती

शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो। सोथर चित भगत हित भेख धरियो हर नाख हरियो नख बिदार जियो।

पासा गुरमुख संगत सबे विचार वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना।

0: अगम अनंत अनाद आद जैसे कोई न जाने है। शिव बिरंच तर ध्यान नित है जस वेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस है। श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त है बसै। गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन को। हुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कसु न बिचारन को। हर नाम बोहित बडो कल में पव सागर पार उतारन को।
1: संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है। ध्रम पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिवतार न तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटित दन आगर। गहर गंभीर अर्थात बड सुपर सदा सभ्यत रत्नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। काल युग दुर्त

सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह सिर साहद जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह। सजन सच्चा पातशाह सिर साहद साह, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी

अब पतियार क्या कीजा, बचने तोर मोर मन माना, जान का पूरन दीजा, हम सार दीन दयाल ना तुम सारा।

वाजे पंच शब्द तित करस पग शब्द वाजे कला चित करतारी पंच दूत तुद वस्य कीते काल कंट कमार तुर कर्म पाया तुद जन कौसे नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होवा तित करया।